जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलिना पा छेगु जीवनया पला पला निपकीमा किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: सुन रहे हैं सर किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज योर कंपेनियन
1: किप्स टाइम चेक
2: अहिले बिहानको 7 बजेको छ
3: किप्स यू कूल
4: किप्स यू अलाइव
5: किप्स यू एंटरटेन किप्स 98.3 FM, your companion, your companion, your companion.
6: KIPPS FM 98.3 presents Beauty, Health and Lifestyle.

0: best romantic Hindi song. Best romantic Hindi song. Best romantic Hindi songs. Every Sunday 9 p.m. Tuesday 6 p.m. Pehla nasha, pehla khuma. Station Gifts FM 98.3 MHz. Naya pyar hai, naya intezaar.
1: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ
2: के
1: ई
2: ई पी
3: एस किप्स 98.3 FM योर कम्पानियन
4: किप्स FM 98.3 प्रेजेन्ट ब्युटी हेल्थ एन्ड लाइफस्टाइल

life-changing quotes. रित्तो खल्ती समस्या होइना, समस्या हो रित्तो मस्तिष्क र रित्तो हृदय। यो भनाई हो जे एन डेविडसन को।

0: भाषाया न्यायपुसी चौमेत
1: सुथैया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 MHz
2: नेपाली पप गीतहरुको उतार चढ़ाव कुन गीत कुन स्थानमा छ साथै नेपाली पप गीतहरुबाट भरपूर मनोरंजन लिन सुन्न नभुल्नु होला किप्स मोस्ट वांटेड किप्स मोस्ट वांटेड
3: हरेक शनिबार मध्याह्न 12 बजे आइतबार राति 8 बजे र मंगलबार बिहान 9 बजे
4: What's the secret to success?
5: Simple. Say yes to radio advertising.
4: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
5: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
4: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.

0: Bips FM 98.2 MHz Jatunin.
1: केही नौलो
2: रोचक
1: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 FM मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक
2: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 FM मा
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
4: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: हिप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे
3: यो हो किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
4: किप्स 98.3 एफएम को कलिउड टाइम मा अहिले तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रका गीतहरू।

0: Keeps FM 98.3 megahertz. Your companion. Your companion. Your companion.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। साथमा सुन्नुहोस् नेपाली र हिन्दी सुपरहिट गीतहरू मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्जमा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे।
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.

0: टिप्स 98.3 FM मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
2: हर एक शनिवार दिल की 10 बजे

एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्। अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।

0: 105.3 FM.
1: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी.
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग, रोमांटिक हिंदी सॉन्ग.
3: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल.
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग एवरी संडे 9 PM, ट्यूसडे 6 PM.
3: पहला नशा पहला खुमार.
2: स्टेशन गिव्स FM 98.3 MHz.
3: नया प्यार है नया इंतजार.
4: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम.
3: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए.
4: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3.

0: ওকে শ্রোতা মিত্র, আমরা ভর করে গীত শুনে সোল্ট নি বা আকাশ খড়কা ফিচারিং ত্রিশালা গুরুং। অব কার্যক্রমমা পালো ভাইসকেকো সেগমেন্ট ইউটিউব ধমাকাকো।
1: ইউটিউব ধমাকা ধমাকা
0: आज सेगमेंट यूट्यूब धमाका में हमी सुन्ने गर्दछौं यूट्यूब में धेरै धेरै व्यूज पटुल्न सफल गीत। सो यस सेगमेंट में पढ्न सफल भएको छ गीत बेला बेला बाई सुशांत केसी। हजुर, यस गीत को राइटर कंपोजर र पर्फर्मर हुनुहुन्छ सुशांत केसी। म्युजिक प्रोडक्शन रहेको छ एसकी र शाश्वत श्रेष्ठको। मिक्सिङ मास्टरिङ पनि गर्नुभएको छ शाश्वत श्रेष्ठले नै। श्रोता मित्र, यो गीत हामी सुन्नेछौँ र यो गीतपछि म लिनेछु एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रम म्युजिक मजामा फेरि आउनेछु र मसँग अरू पनि विभिन्न गीतहरू रहेका छन् जुन तपाईँको लागि म राख्नेछु। स्टेसन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्जलाई ट्युन इन गरिराख्नुहोला।

0: number 19.
1: इश्क का इत्र महंगा था पर ले लिया।
2: मूवी
3: ओ रोमियो।
2: सॉन्ग
3: आशिकों की कॉलोनी।
1: शाम

0: number 10.
1: जमाने की तरह हम भी तोड़े हैं गए.
2: मूवी
3: पति पत्नी और वो दो.
2: सॉन्ग
3: हमने वही लगाया दिल.

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज योर कम्पानियन
1: नेपाली पॉप फ्लैशबैक
2: कम इन यू का
3: कैन आई शो यू